क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।

0: बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: 2 या 4 कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: 4 या 5
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2।

मुंबई। सुना था यहाँ आदमी पूरी जिंदगी अपनी किस्मत स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक लाने में निकाल देता है, पर ढाई घंटे में मेरी किस्मत ऐसे स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सजा मजा बन जाएगी, ये भी कभी सोचा नहीं था। लास्ट लोकल क्या छुट्टी, साला किस्मत पटरी पर आ गई।

0: Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
3: दो या चार?
2: चार।
3: कब तक वापस लौटेगा?
2: यूं ही यहीं। चार पांच दिन में?
3: चार या
2: पांच? पांच।
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 6.2

0: 106.2, The Beat of Bollywood. The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। आप सुन रहे हैं बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 96.2. The Beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
3: दो या चार?
2: चार।
3: कब तक वापस लड़ेगा?
2: यूं ही यहीं? 4-5 दिन में?
3: चार या
2: पांच? पांच।
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
5: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। If you've ever set a ringtone to Kya Mujhe Pyar Hai, you're in the right place. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

39 पे भी नुसरत साहब की ही कवाली, ऑन 38 अगेन नुसरत साहब की कवाली, बट वेरी ब्यूटिफुली रिक्रिएटेड. फिलहाल प्लेइंग इन द टॉप 40 बिगेस्ट हिट्स ऑफ द वीक. This is the Big Bollywood Countdown, keeping you company. I'm Mansi, right here on Big 106.2, the beat of Bollywood. Moving on to number 37, a recreated gana, original gana, movie ka naam Shakti hai, bahut hi underrated movie hai of early 2000s. You have to watch if you're into good cinema. Karishma Kapoor, she is fantastic, saath mein Nana Patekar. But is gaane mein Shah Rukh Khan and Aishwarya the, original gaane mein recreate hua hai for Baby Do Die Do. Great reviews, Huma Qureshi and साकिब देयर सिबलिंग्स, इनके प्रोडक्शन हाउस की पहली मूवी है एंड ऑफिशियल ओटीटी रिलीज अनाउंस नहीं हुई है. जुलाई में ये मूवी रिलीज हुई थी थिएटर्स में, बट कहा जा रहा है एंड ऑफ सितंबर और अक्टूबर फर्स्ट वीक में ये ईदर ऑन Amazon प्राइम या Z5 पे आएगी. दिस नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट, बट आई हैव टू से हुमा कुरैशी, शी नीड्स no introduction. She is fantastic as an actress on the screen. Chahe wo Gangs of Vasaipur ho, Badlapur, ya phir Delhi Crime Season 3. And she's done some fantastic work. In fact, this is a real story of India's first hit woman called Baby Karmarkar. On number 37 this week, on 36, once again a recreated gana. Gana, YouTube sensation Mondal Brothers ka hai, recreate hua hai for Pati Patni aur Vodo.

0: इस हफ्ते बादशाह ने रिक्रिएट किया है गाना फ्रॉम पति पत्नी और वो दो ऑन नंबर 36।
1: द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन, द पार्ट ऑफ द बिग वीकेंड, बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
4: दो या चार?
3: चार।
4: कब तक वापस लौटाएगा?
3: यही 4-5 दिन में।
4: चार या
3: पांच?
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
1: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Bollywood Countdown. Big 106.2. The Beat of Bollywood. Number 37.

On number 35 from Welcome to the Jungle, that was Ucha Lamba Kad. Yes, the biggest ensemble cast ever together. Also reunited Akshay Kumar and Raveena Tandon after decades. Playing in the top 40 biggest hits of the week, I'm Mansi. This is the big Bollywood countdown. Also talking about reunions, 11th September, that is... इसी वीक रिलीज हुई है हैवान. अक्षय कुमार सैफ अली खान ऑन द बिग स्क्रीन टुगेदर आफ्टर 18 इयर्स. प्रियदर्शन की मूवी है एंड अक्षय कुमार इज शिफ्टिंग अवे फ्रॉम हिज यूजुअल हीरोइक रोल्स. ही इज प्लेइंग परशुराम, एक नेगेटिव साइकोपैथिक कैरेक्टर इन दिस मूवी. रिसेंटली ऑन द 9th ऑफ सितंबर अक्षय कुमार सेलिब्रेटेड हिज 59th बर्थडे एंड ही शेयर्ड अ मैसेज अबाउट हिज कैरेक्टर फ्रॉम हैवान, व्हाट लुक्स ईविल मे नॉट ऑलवेज बी ईविल. सो या ग्रेट रिव्यू सो फार हैवान के एंड आई हैवंट सीन द मूवी बट प्लान है मेरा मिर्जापुर एंड हैवान थिएटर्स में देखने का. मूविंग ऑन, इस हफ्ते ऑन नंबर 34 अ सॉन्ग लाइक आई ऑलवेज से इवन आफ्टर डेकेड्स विल स्टिल बी अ पार्ट ऑफ आवर प्लेलिस्ट. सतिंदर सरताज, जैस्मिन सैंडल्स फ्रॉम धुरंधर 2. एवरी सिंगल टाइम आई मिस एन एग्जिट, मैं यही गाना गाती हूँ इन माई हेड. इसी के साथ एक और गाना दैट इज हियर टू स्टे, आई थिंक जेन जी के जगजीत सिंह है अनुव जैन.

प्रीतम का म्यूजिक, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य की आवाज, एंड आई एम श्योर वी ऑल नो नंबर वन पे इट हैज टू बी इमरान हाशमी, इट हैज टू बी. तो फिर आओ, एंड इफ यू आर वंडरिंग कि अब कब आएंगे इमरान हाशमी ऑन द बिग स्क्रीन आफ्टर आवारा पन 2, देन वी विल गेट टू सी हिम अराउंड लेट नवंबर दिस ईयर. द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड गन मास्टर G9. And this project marks a highly anticipated reunion. Two decades ke baad, the iconic 2005 ki collaboration Aashiq banaya aapne wali team, Imran Hashmi with director Aditya Dutt and music composer Himesh Reshamya are coming back together. I'm already declaring this movie a hit. The movie also stars Janelia and Apar Shakti Khurana, and it is a romantic action entertainer. So yes, around late November, we'll get to see Imran Hashmi on the big screen again. फिलहाल चिपका हुआ है इमरान हाशमी का ये गाना नंबर 1 पर.

0: जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, डेफिनेटली करता हूँ।
1: From hidden cafes to viral hotspots, we have got your weekend sorted. The Big Recommends with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ। दिस इज द बिग रेकमेंड्स, 3 से 6 आपके साथ रहूंगी। एंड इफ यू हैव अ स्वीट टूथ लाइक मी, आपको मीठा खाना बहुत पसंद है, देयर इज वन वायरल डिश गोइंग ऑफ कोर्स ट्रेंडिंग ऑन इंस्टाग्राम, दैट्स हांगकांग की है वैसे, पर आपको दुबई में मिल जाएगी। पर दुबई में कहाँ मिलेगी, गोना टेल यू इन अ बिट। अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

Music 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड रिकमेंड करने वाली हूँ आज मैं आपको द वायरल हांगकांग टोस्ट, जो कि खाने के लिए आपको हांगकांग नहीं जाना पड़ेगा, दुबई में मिल रहा है ये। इफ यू लव बटरी सुपर क्रिस्पी टोस्ट, दिस वन इज फॉर यू। बेसिकली ये स्वीट ब्रेड की तरह है, जो आप घर पे कभी बनाते हो दूध वाली ब्रेड, काइंडा लाइक दैट। बट द मोमेंट आई टेस्टेड इट, मुझे चोकोलावा की फीलिंग आ गई भाई। वन कट एंड ऑल द चोकोलावा केम आउट, इट वॉज सुपर यमी, सुपर बटरी। एंड अगर आपका भी स्वीट टूथ है मेरे जैसा, यू कांट मिस दिस। कहाँ मिलेगा आपको ये दुबई में बताती हूँ आपको। अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज द बिग रेकमेंड्स एंड रेकमेंड कर रही थी मैं आपको वायरल हांगकांग टोस्ट इन दुबई विच एक्चुअली स्टार्ट्स एट 18 दिरहम्स ओनली. गॉट 2 to 3 फ्लेवर्स. वन इज हनी बटर विद पीनट बटर, वन इज चॉकलेट विद मिल्क लावा एंड अनदर वन इज चॉकलेट विद चॉकलेट लावा. मैंने चॉकलेट वाला ट्राई किया था ऑफकोर्स. भाई मैंने बात करी स्वीट होता एंड चॉकलेट तो मुझे वैसे भी प्यार है उससे. वन कार्ट एंड ऑल द लावा कम्स आउट. 20 दिरहम्स का ये है, 18 से शुरू होता है. दिस ऑल्सो द हनी बटर विद पीनट बटर कॉस्ट ओनली 16 दिरहम्स. आपको ये मिल जाएगा सिलिकॉन ओएसिस में. अगर आपको खाना है, मन है, इंस्टाग्राम पर देख के थक चुके हो कि यार कभी तो प्लेट में आए, कभी तो मैं एक बाइट टेस्ट कर सकूं, सिलिकॉन ओएसिस इज द प्लेस. यू विल गेट दिस हांगकांग टोस्ट. कमिंग अप नेक्स्ट आर द मोजरेला चीज. ऑफकोर्स यार अब स्वीट टूथ वालों का हो गया तो मैं सेवरी वालों की तरफ भी जाऊंगी ना. डू यू रियली गेट दैट चीज पुल इन रियल लाइफ? गोना टेल दैट इन अ बिट. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, डेफिनेटली करता हूँ।
1: From hidden cafes to viral hotspots, we have got your weekend sorted. The Big Recommends with Avni, only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: You know what's real torture? जब आप रात के 2-3 बजे रील स्क्रॉल कर रहे हो, डिनर आपने 9 बजे का खा लिया हुआ है, एंड ऑल यू वॉचिंग इज मकबैंग वीडियोस। बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, एंड इन दिस आवर रिकमेंड करने वाली हूँ एक ऐसी डिश, एक ऐसी वायरल ट्रेंडिंग डिश जो बहुत लोग सिर्फ रात को देख रहे होते हैं यार। एंड रात को मन करता है यार अब ऑर्डर करेंगे, अभी खाएंगे, इतना हैवी है, पचेगा कैसे। आई एम टॉकिंग अबाउट द मोज़रेला चीज़ स्टिक्स एंड वन पर्टिकुलर फ्लेवर फ्रॉम वन पर्टिकुलर आउटलेट। अगर आपको पता लग गया मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, कॉल करो मुझे 800-1062 पे, बिकॉज ऑफ कोर्स आपकी और मेरी फीड लगता है ऑलमोस्ट सेम है, बिकॉज यू एंड मी बोथ आर फूडी। कमिंग अप नेक्स्ट आर द मोज़रेला चीज़ स्टिक्स, कौन सा फ्लेवर है बताती हूँ। अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।
3: Work it for me like this.

क्या आपको भी लगता है यार कि Instagram is not Instagramming in real life? Because जो भी हम viral videos देखते हैं, especially mukbang videos देखते हैं viral mozzarella sticks की, कि इतना बड़ा cheese pull हो रहा है, ये हम जब घर पे कुछ बनाएं या घर पर मंगवाएं तो नहीं होता है। Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, this is the big recommends and this time I'm recommending Korean mozzarella cheese sticks, जो कि chilies की बहुत famous हो रही हैं, बहुत videos बन रही हैं, लोग बस जाके वहाँ पे खाने के लिए बैठे इसलिए कि भाई cheese pull होगा, हम इसको record करेंगे। Well, I tried their viral Korean mozzarella cheese sticks. Basically, वो काफी flavors में आती हैं। The barbecue, honey, the spicy heat and the most viral Korean ones as well. क्या cheese pull आया या नहीं आया? Gonna tell you in a bit. Until then, keep it locked to Big 106.2, the beat of Bollywood.

You know, I wasn't even craving for it. Only the mukbang videos made me do this. Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. This is the big recommends जहाँ पर मैंने try किया है आज चिलीज की viral Korean mozzarella cheese sticks. जहाँ पे of course हम expect करते हैं कि हम cheese pull होगा खाएंगे सॉस के साथ लगा के खाएंगे बट आई एम नॉट इवन किडिंग आई हैड अ बाइट एंड नॉट अ चीज पुल इन फैक्ट क्योंकि उसमें मोजरेला चीज का इतना बड़ा क्यूब था जो बाहर के स्पाइसेस थे वो भी उसे स्पाइसी या फिर फ्लेवरफुल नहीं कर पाया यार इट वॉज जस्ट ब्लैंड मोजरेला स्टिक इससे अच्छा तो मैं यार घर पे जो सैंडविच पर चीज लगता है वो खा लूं उससे टेस्ट आ जाता है इफ यू हैव एवर ट्राइड दीज कोरियन मोजरेला चीज स्टिक्स आपके क्या रिव्यू रहे बताओ मुझे कॉल करके 800-1062 पर या फिर आप मुझे डीएम भी कर सकते हो 106.2 बिग एफएम के इंस्टा हैंडल पर अंटिल देन कीप इट लॉक टू बिग 106.2

0: जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, डेफिनेटली करता हूँ।
1: From hidden cafes to viral hotspots, we have got your weekend sorted. The Big Recommends with Avni, only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: And I have a sweet tooth. उसके बावजूद मैंने वो savory try की mozzarella sticks, लेकिन उसके बाद मैं वापस से इस sweet पर आ चुकी हूँ. The internet sensation chocolate puddle cake अब दुबई में है. If you know about this, you know मैं क्या बात कर रही हूँ. Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ. If you love the gooey brownie over chocolate over ice cream, और वो थोड़ी ठंडी है लेकिन काफी गर्म है, one bite in your mouth and it just melts. बताती हूँ दुबई में कहाँ मिलेगी आपको, कितने की मिलेगी आपको. Until then, keep it locked to Big 106.2, the beat of Bollywood.
3: Now listen, get up. That's right.

The internet sensation, the viral chocolate puddle cake is now in Dubai. Big 106.2 se main hu Avni aapke saath. This is the big recommends and I would highly recommend Alwarka mein aapko ye mil jayega viral chocolate puddle cake only in 20 dirhams. There's this just one cup with a lot of brownie, gooey brownie and a lot of chocolate syrup jo ki bahut rich hai by the way. Uske upar one scoop of vanilla. Bhool jaoge aap koi bhi aur chocolate dish, chocolate fudge cake, you'll forget everything else. हाँ, ये कप जो है आप अकेले खत्म नहीं कर सकते हो. हैविंग अ स्वीट टूथ मैं भी नहीं कर पाई. सो यू वुड एक्चुअली नीड 2 to 3 पीपल अराउंड यू. कल मंडे है, मैं सोच रही हूँ कि मंडे ब्लूज हटाने के लिए एक कप तो मैं भी डिजर्व करती हूँ. सो फॉर मी एंड माई कलीग्स, वन कप ऑफ चॉकलेट पडल केक. वुड यू ट्राई दिस? टेल मी 800-1062 पे कॉल करके. अलवरका दुबई में मिल जाएगा आपको ये. अंटिल देन, कीप इट लॉक टू बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.

6.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस वाज द बिग रेकमेंड्स. फिलहाल हो रहा है मेरे जाने का टाइम, पर आपको पता है ना मैं हमेशा रहती हूँ इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन. ऑल यू हैव टू डू इज फॉलो अस ऑन 106.2 बिग एफएम का पेज, और आप मुझे भी डीएम कर सकते हो अवनी यार के पेज पर AVNIY RRR. जितनी भी डिशेज की बात हुई, अगर आपको उनकी एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, आप डीएम कर सकते हो 106.2 बिग एफएम इंस्टा हैंडल पर. मिलती हूँ मैं आपको कल फिर से मंडे को विद द बिग मिक्स 1 to 5. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड बिग 106.2 द बीट ऑफ Bollywood.

0: आपने बहुत अच्छा शॉट दिया।
1: थैंक यू। मेरे लिए तो ये सब एक ख्वाब जैसा है।
0: ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, पर ये

0: Big 106.2, The Beat of Bollywood. आप सुन रहे हैं Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: आज दिन चढ़िया तेरे रंग वरगा, तेरी चुम्मन पिछली संग वरगा, है किरना दे विच नशा जिहा, किसे छीमे सप दे डंग वरगा, आज दिन चढ़िया